0: 98.5 2000 FM.
1: Radio 2000 98.5 FM Community Program.
2: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
1: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music, and community announcements.
2: Swagat hai Darpan Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaye.
1: Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio.
3: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
4: 2000's station sponsor.
5: Ivar, you got 5026, Vikram Samvat 2083, Krishna Paksh ki Triyodashi, 12 July 2026 hai. Darpan ke sabhi shrotaon ko Poonam ki namaste. Is saptah ke samachar is prakar hain. PM Modi 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर थे। भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह यात्रा भारत इंडोनेशिया की सामरिक साझेदारी को नई दिशा देगी। इस यात्रा का फोकस व्यापार, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और ASEAN के साथ सहयोग है। इसके उपरांत पीएम मोदी मेलबर्न पहुंचे, जहां उनकी बड़ी ही गर्मजोशी से 30,000 भारतीयों और प्राइम मिनिस्टर एल्बनीजी ने उनका स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार, निवेश और सामरिक साझेदारी पर बातचीत करना था। यह यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाली है। इसके उपरांत प्राइम मिनिस्टर पहुंचे न्यूजीलैंड। लगभग 40 साल के बाद किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की न्यूजीलैंड की पहली आधिकारिक यात्रा की गई थी। उसका उद्देश्य भारत न्यूजीलैंड संबंधों को अगले स्तर पर ले जाना है। अप्रैल में हुए भारत एनजेड मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की गई। इससे भारत के 1.4 मिलियन लोगों का बाजार न्यूजीलैंड के लिए खुल गया, जिससे नौकरियां और निर्यात बढ़ने की संभावना है। इस यात्रा का फोकस व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी और लोगों के आपसी संबंधों को बनाए रखना है। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर ने यह घोषणा की थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत ही अहम है। एक दुखद घटना में वियतनाम घूमने गए भारतीय पर्यटकों के साथ बड़ा हादसा हुआ। हनोई में भारतीय दूतावास ने बताया कि 11 जुलाई को वियतनाम के फु केचक द्वीप के पास भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट पलट गई। इस हादसे में 15 लोगों की मृत्यु हो गई और 32 घायल हो गए, जिनमें से 21 को बचाकर अस्पताल ले किया गया है। भारत में 2047 तक खुद को विकसित देशों की लिस्ट में लाने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने पहली बार 2022 के 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प रखा था। तब से मोदी सरकार देश को विकसित बनाने के लिए कार्यरत है। 21 साल बाद एक विकसित देश की कैटेगरी में आने के लिए भारत को क्या करना होगा? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अभी सारी दुनिया में सिर्फ 37 देश ही विकसित की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से 31 देश सिर्फ यूरोप के हैं। एशिया में केवल 2 देश हैं जिन्हें विकसित माना जाता है, यह है साउथ कोरिया और जापान। भारत की अर्थव्यवस्था तो बड़ी है, लेकिन यहाँ की आबादी इतनी है कि प्रति व्यक्ति कमाई में भारत कई देशों से पिछड़ जाता है। वर्ल्ड बैंक ने कई सालों से भारत को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों में लिस्ट किया हुआ है। भारत की सालाना प्रति 2760 डॉलर यानी लगभग 2.63 लाख रुपए है। आज के दौर में जब ग्लोबल वार्मिंग और बिजली की खपत एक बड़ी समस्या बन चुकी है, आमेर फोर्ट का सुख निवास दुनिया के लिए इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन प्रमाण है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आमेर फोर्ट में एक ऐसा शाही कमरा है जहां बिना बिजली और आधुनिक मशीनरी के प्राकृतिक रूप से एसी जैसी ठंडी हवा मिलती है। आज से 400 साल पहले राजपूत वास्तुकारों ने पीले, गुलाबी और बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से इस किले को तैयार किया था। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया था कि बाहर चाहे कितनी भी लू चल रही हो, परंतु अंदर बैठे राजा को शिमला जैसी ठंडी हवा मिलेगी। इसका निर्माण कछावा शासन राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था। महल की छत पर बने विशाल टैंक है और नीचे स्थित माबाता सरोवर बनाया गया। इसके बाद पश्चिमी हवाओं के रुख को ध्यान में रखते हुए पानी को संगमरमर की बारीक नालियों से झरने के रूप में नीचे गिराया गया। जब गर्म हवा इस पानी से गुजरती थी तो वह तुरंत ठंडी हो जाती थी। पहले पेट्रोल पंप्स पर E10 पेट्रोल मिल रहा था, तब कोई बवाल नहीं मचा, लेकिन जब से E20 यानी 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल शुरू हुआ, तब से आए दिन हंगामे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल है कि पेट्रोल में गन्ने का जूस मिलाकर बेचा जा रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARA और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से टेस्टिंग के बाद ही E20 को मंजूरी मिली थी। अयोध्या के राम मंदिर में VIP दर्शन पास की व्यवस्था एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है। राम मंदिर के चंदा और चढ़ावा से जुड़े विवाद के बीच यह जानकारी सामने आई है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुछ अधिकारियों के VIP पास जारी करने के अधिकार छीन लिए गए हैं। इसके बाद जनता से में यह उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर राम मंदिर में VIP पास कैसे बनता है और इसके लिए कौन अधिकृत है। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अलावा अयोध्या के जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, DIG और कमिश्नर को यह पास जारी करने की सुविधा है। यह अधिकारी 200 लोगों के लिए पास जारी कर सकते हैं, जबकि ट्रस्ट के लिए ऐसी कोई निर्धारित सीमा नहीं है। फिर भी बातों में 4000 करोड़ के महंगे बजट से बनी रामायण का यह धार्मिक फिल्म निमित्त बड़ी सिनेमैटिक स्पेक्टिकल में से एक होगी। रणबीर कपूर ने राम का अभिनय किया है और इसकी पहली झलक रिलीज होने के साथ ही मेकर्स ने दर्शकों को भारत के सबसे सदाबहार महाकाव्यों में से एक की विरासत की एक झलक दिखाई। मेकर्स ने 24 जुलाई 2026 को इस ट्रेलर का रिलीज करने की घोषणा की है और यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस भी इसे देख सकेगी। वाणिज्य समाचारों में दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक सोने का भाव 1,32,330 रुपए है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलियन डॉलर 66 रुपए 16 पैसे, अमेरिकन डॉलर 95 रुपए 15 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त हुए।
6: श्रोताओं, आज आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मेरे साथ यतिंद्र गुप्ता, और आज हमारे मेहमान हैं शिष्य झा जी। जैसे कि मैंने अपने संदेश में लिखा था, शिष्य जी दर्पण रेडियो में आपका स्वागत है।
7: बहुत बहुत धन्यवाद यतिंद्र जी, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
6: आज का सारा प्रोग्राम श्रोताओं थोड़ा सा अजीब होने वाला है, अभी से मैंने बता दिया, आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। और बताइए मुझे कि आप मिथिला के बारे में कितना जानते हैं? हमारे शिष्य जी जो है ना, मुझे खुद नहीं मालूम था, तो इसलिए जब हमारी बातचीत हुई तो मालूम पड़ा कि कुछ नहीं जानते हैं। तो जिसकी स्क्रिप्ट भी अलग है, ये भी मुझे, मैं समझता था कि ये हिंदी का ही एक जैसे भोजपुरी में लिखते हैं बोलते हैं इस तरीके का है, तो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आज हम मिथिला के बारे में बात करेंगे। और श्रोताओं, एक और बात हम करना चाहते हैं, जितना टैक्स और SMSF के बारे में चेंजेज हुए हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग हम चाहते हैं कि इसका सेगमेंट शुरू करेंगे हम दर्पण रेडियो पे, जिसका नाम होगा SMSF एंड टैक्स। उसकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी, हम उसको आंसर करेंगे, और प्रैक्टिकल जो भी सोल्यूशन भी होते हैं वो भी हम बात करेंगे। तो उसकी शुरुआत हम आज से करेंगे। आज हम बात करेंगे नेगेटिव ग्रेडिंग के ऊपर, और SMSF में जो एक पाबंदी लगा दी उन्होंने कि लोन नहीं ले सकते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ऊपर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अपना पेन एंड पेपर खोल लीजिए, जो भी प्रश्न हैं आप मेरे से पूछ सकते हैं, या अभी भी मुझे लिख सकते हैं। मेरा नंबर भी आप नोट कर लीजिए, 0421-590-791, 0421-590-791। और हमारे जो फोरम है दर्पण रेडियो का व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो आज की कुछ रूपरेखा हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अगर आप चाहते हैं कोई और भी हम सेगमेंट शुरू करना चाहें, तो आप मुझे सुझाव दीजिए कि हम और क्या सेगमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे यंग लोग, नए माइग्रेंट आते हैं, जो शायद हमारे रेडियो प्रोग्राम को जानते भी नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो मदद करते हैं उनकी, तो कैसे मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके बारे में, तो हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन आगे जाने के पहले हम सुनते हैं आज का विचार पूनम जी से।
5: श्रोताओं, आज का विचार
8: यह है, सच्ची खुशी बाहर की नश्वर वस्तुओं में नहीं
5: बल्कि मन की संतुष्टता में है। जब आत्मा यह गहराई से अनुभव कर लेती है कि परमात्मा ने उसे जो दिया है वह अनमोल और पर्याप्त है, तभी जीवन में परम आनंद और असीम शांति की प्राप्ति होती है।
6: दोबारा से सुनते हैं, थोड़ा सा बीच में हिकअप हो गया था।
5: श्रोताओं, आज का विचार यह है, सच्ची खुशी बाहर की नश्वर वस्तुओं में नहीं मिलती बल्कि मन की संतुष्टता में है। जब आत्मा यह गहराई से अनुभव कर लेती है कि परमात्मा ने उसे जो दिया है वह अनमोल और पर्याप्त है, तभी जीवन में परम आनंद और असीम शांति की प्राप्ति होती है।
6: तो श्रोताओं, आप कितने लोग ऐसे हैं जो शांति चाहते हैं, या आप दुनियादारी चाहते हैं?
3: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
4: 2OO's station sponsor.
9: Jilly MacArthur ki saal ke ant ki demo clearance sale ab shuru ho gayi hai. इस जून जीली मकार्थर से कोई भी डेमो जीली खरीदिए और पाइए तीन साल की मुफ्त सर्विसिंग, $2,000 का शानदार ट्रेड इन बोनस, साथ ही प्रीमियम पेंट बिल्कुल मुफ्त। जीली की शानदार एसयूवी रेंज पर बेहतरीन बचत का यह मौका हाथ से ना जाने दें, चाहे वह पूरी तरह इलेक्ट्रिक जीली EX5 हो या दमदार सुपर हाइब्रिड स्टार रे EMI। ऑफर 30 जून तक ही मान्य है, आज ही जीली मकार्थर आए और अपनी पसंदीदा जीली घर ले जाए। नियम एवं शर्तें लागू। MD5411
4: 2OO's station sponsor.
10: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: 2OO's station sponsor.
1: Radio 2098.5 FM. Community program.
2: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
1: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
2: Swagat hai Darpan Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaye.
1: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
11: मैं रंजना रमन रेडियो दर्पण के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आइए सुनते हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज यानी 19 जुलाई 2026 रविवार, युगाव 5128 विक्रम संवत 2083 आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। सबसे पहले सुनते हैं भारत से खबरें। नीट परीक्षा अनियमितताओं पर बड़ा आंदोलन, सोनम वांगचुक का 19 दिन का अनशन। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लगातार 13वें दिन अनशन पर रहे और उनका वजन 9 किलो से अधिक कम हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि उनकी दैनिक मेडिकल मॉनिटरिंग की जाए। कांग्रेस जनता पार्टी CJP और कई छात्र संगठन नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ियों के खिलाफ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तीसरी भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि कक्षा 9 में तीसरी भाषा जोड़ना बंद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा से पहले यह बच्चों पर अत्यधिक बोझ डालता है। यह टिप्पणी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ हिस्सों पर पुनर्विचार की मांग को तेज करती है। ED की देश भर में छापेमारी, आतंक फंडिंग और अवैध घुसपैठ केस। प्रवर्तन निदेशालय ने 5 राज्यों के 13 ठिकानों पर छापे मारे। मामला आतंकी फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़ा है। जांच एजेंसियां ने कई डिजिटल और वित्तीय दस्तावेजों को जब्त किए हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च, रेलवे में बड़ा बदलाव। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हरियाणा के जिंद सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर की दूरी में चलेगी। भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है, जो ग्रीन हाइड्रोजन रेल तकनीक पर काम कर रहे हैं। अमेरिका के नए वीजा नियमों पर भारत का बयान। ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पत्रकारों सांस्कृतिक एक्सचेंज विजिटर्स के लिए वीजा अवधि को निश्चित अवधि में बदलने की नियम जारी किए हैं भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इमिग्रेशन किसी भी देश के संप्रभु अधिकार में से आता है लेकिन भारतीय छात्रों और यात्रियों की समस्याओं को अमेरिका के साथ उठाया जाएगा राम मंदिर दान चोरी मामला एसआईटी को विस्तार आरएसएस की सख्त प्रतिक्रिया राम मंदिर दान चोरी मामले में पुलिस ने एक आरोपी के घर से राम राज्य कोष लिखा दान बॉक्स बरामद किया एसआईटी को 15 दिन का और समय मिला है आरएसएस ने पहली बार बयान देकर कहा कि दोषियों की को कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसरो में वैज्ञानिकों के इस्तीफे बढ़े सरकार ने मेमो जारी किया इसरो के लगभग 100 वैज्ञानिक और इंजीनियर विभिन्न केंद्रों से इस्तीफा दे चुके हैं यह स्थिति गगनयान और अन्य महत्वपूर्ण मिशनों को प्रभावित कर सकती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने वैज्ञानिकों के पलायन को रोकने के लिए विशेष मेमो जारी किया है आइए अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की खबरें बीएचपी की ऐतिहासिक हड़ताल 25 साल में सबसे बड़ा औद्योगिक आंदोलन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट हैंडलैंड में बीएचपी के खिलाफ बड़ी औद्योगिक हड़ताल हुई लगभग 100 यूनियन सदस्य और समर्थक साइट के बाहर जुड़े इसे 25 वर्षों में सबसे बड़ा खनन औद्योगिक आंदोलन बताया गया है हड़ताल के बावजूद जहाजों की लैंडिंग जारी रही लेकिन यूनियनों ने अनुमान लगाया था कि इससे बीएचपी को $50 मिलियन का नुकसान हो सकता है पिलबरा में बिजली ग्रिड कर्मचारी भी हड़ताल के पक्ष में इलेक्ट्रिकल ट्रेड यूनियन ने बताया कि बीएचपी के हाई वोल्टेज ग्रिड पर काम करने वाले कर्मचारी काम बंद करने के पक्ष में भारी संख्या में वोट कर चुके हैं कर्मचारी बेहतर कार्य शर्तें और प्रमोशन के स्पष्ट मानदंड की मांग कर रहे हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस का बड़ा अलर्ट बैक पेपर और छात्रों की मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम से सावधान रहने की अपील वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पुलिस और क्राइम स्टॉपर्स ने चेतावनी दी है कि अपराधी फर्जी जॉब ऑफर और सोशल मीडिया संदेशों के जरिए लोगों को अपने बैंक खातों से पैसे ट्रांसफर करने के लिए फंसा रहे हैं पिछले एक साल में 13,000 संदिग्ध बैंक अकाउंट बंद किए गए हैं दक्षिण पश्चिम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एंटी सार्कोटिक दवाओं की कमी एक मौत की जाँच में बड़ा खुलासा एक कोरोनियल इंक्वेस्ट में पता चला कि एक सिज़ोफ्रेनिया मरीज को उसकी नियमित दवा ओलेंजापाइन नहीं मिल सकी क्योंकि देश भर में इसकी कमी थी दवा की कमी का कारण वेट लॉस ड्रग्स की बढ़ती मांग से जुड़ा बताया गया है मरीज की 8 महीने बाद संदिग्ध ओवरडोज से मौत हो गई ऑस्ट्रेलिया भारत रक्षा सहयोग में बड़ा विस्तार मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ प्रधानमंत्री एंथनी अल्बेनीजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग को गहरा करने की सहमति जताई दोनों देशों ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन जारी किया और ज्वाइंट मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप को मंजूरी दी चीन द्वारा 55% बीफ टैरिफ ऑस्ट्रेलियाई किसानों पर बड़ा आर्थिक झटका चीन ने 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलियाई बीफ पर 55% आयात शुल्क लगा दिया इससे ऑस्ट्रेलिया के बीफ निर्यात में 1/3 तक गिरावट की आशंका है सरकार ने चिंता कम करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष ने इसे किसानों के लिए गंभीर खतरा बताया है बोंडाई बीच आतंकी हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर रॉयल कमीशन की मांग तेज 14 दिसंबर के बोंडाई बीच हमले के बाद सरकार ने सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा की घोषणा की व्यापारिक और धार्मिक संगठनों ने फेडरल रॉयल कमीशन की मांग की है ताकि बढ़ते सामाजिक तनाव और सुरक्षा खामियों की गहराई से जांच हो सके यह मुद्दा इस सप्ताह मीडिया में सबसे अधिक बहस का विषय रहा आइए देखते हैं दुनिया की मुख्य खबरें अमेरिका ईरान संघर्ष फिर से भड़का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों पर हमले वैश्विक तेल आपूर्ति खतरे में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर बढ़ गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कई जहाजों पर हमले हुए लगभग 6,000 नाविक सैकड़ों जहाजों में फंसे हुए हैं जिससे वैश्विक शिपिंग लगभग ठप है संयुक्त राष्ट्र ने ईरान के हमलों की निंदा की है और देशों से इस मार्ग से बचने की अपील की है तेल की कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ी लेकिन फिर $77 प्रति बैरल के आसपास स्थिर हो गई ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खमनेई का अंतिम संस्कार लाखों लोग सड़कों पर संघर्ष और तेज 9 जुलाई को ईरान में ने अपने मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई को दफनाया 1.5 करोड़ से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए दफन से कुछ घंटे पहले ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल से हमले किए तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल तक उछली और वैश्विक महंगाई पर असर पड़ा। अफ्रीका में इबोला का सबसे तेज फैलने वाला प्रकोप, 40 दिनों में 1000 से ज्यादा केस। कांगो में इबोला का 2026 का प्रकोप इतिहास का सबसे तेज फैलने वाला माना जा रहा है। 40 दिनों में 1000 से अधिक केस दर्ज हुए, यह अब तक की सबसे तेज वृद्धि है। कुल केस 2000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल के स्तर का खतरा बताया है। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 1972 के बाद पहली बार मानव चंद्रमा के पास पहुंचे। आर्टेमिस 2 मिशन ने 7 घंटे का ऐतिहासिक चंद्र फ्लाईबाय पूरा किया। यह 1972 के अपोलो 17 के बाद मानव का चंद्रमा के पास पहला मिशन है। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से दूरी का नया रिकॉर्ड बनाया। स्पेस एक्स का ऐतिहासिक आईपीओ, एलन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बने। स्पेस एक्स के आईपीओ ने इतिहास रच दिया। कंपनी का मूल्यांकन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। एलन मस्क आधिकारिक रूप से दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर घोषित हुए। यह वैश्विक टेक और स्पेस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है। यूक्रेन रूस युद्ध, यूक्रेन ने रूसी जहाजों पर बड़े हमले किए। यूक्रेन ने काला सागर में रूसी सैन्य जहाजों पर सफल हमले किए। यह रूस की नौसैनिक क्षमता को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा है। नाटो देशों ने यूक्रेन को अतिरिक्त समुद्री सुरक्षा सहायता देने की घोषणा की है। ग्लोबल हीट वेव और जलवायु संकट, कई देशों में रिकॉर्ड तापमान। जुलाई 2026 में दुनिया के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। मध्य पूर्व, यूरोप और अमेरिका में तापमान ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक गर्मी अब एक नया सामान्य बन गया है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। सुनते रहिए दर्पण रेडियो। धन्यवाद।
12: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारी वार्ताएं, गीत, और हमारा आज का थीम होगा, शैलजा जी बताइए हमारे थीम को।
13: पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी के विषय में बात करेंगे, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 19 जुलाई को 2018 में उनका देहावसान हुआ था। तो
12: आज हमारे साथ शैलजा जी तो हैं ही, हमारे साथ जितेंद्र गुप्ता जी भी हैं और आशिमा जी भी बहुत दिनों के बाद आई हैं। तो आशिमा जी ने सोचा कि चलिए नीरज की को श्रद्धांजलि देते हुए हम एक कविता पाठ तो जरूर करेंगे, लेकिन हमारे साथ साथ एक हमारे गेस्ट भी हैं
13: जी। हाँ।
12: हमारी मेहमान हैं
13: विजेंद्र
12: दुग्गल जी,
13: आशा की वो ओरिजिनल फाउंडेशन प्रेसिडेंट हैं।
12: अच्छा, उन्हें एक पुरस्कृत भी किया गया है रिसेंटली, उन्हें सिडनी में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो।
13: बिल्कुल।
12: और उन्होंने बड़ी समाज सेवा की है, स्पेशली सीनियर्स की। तो हम वो आएंगी तो हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आपने कैसे सोचा कि इस ऑर्गेनाइजेशन को रखना चाहिए, आपको यहाँ के सिस्टम में क्या कमी दिखाई दी या क्या अच्छा लगा, कैसा है, क्या है, उनके बारे में और जानना चाहेंगे कि भाई वो कहाँ से हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारे पास हमारे जो रंजना जी ने बहुत सारी मेहनत करती हैं, उन्होंने एक वार्ता भेजी है मोदी जी के विज़िट के बारे में, जो अभी विदेशों में गए थे वो। इसके अलावा हमारी सरिता जी हैं, वो भारत में हैं, लेकिन उन्होंने दो दो वार्ताएं भेजी हैं। एक तो है राम मंदिर के बारे में, जो अभी वहाँ चोरी हुई है। और साथ साथ हम एक बहुत स्पेशल बात आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, इस साल अभी अगले महीने शायद सेंसस होने वाला है। सेंसस होगा, नया सेंसस है। इसमें अफसोस की बात यह है कि वहाँ 7-8 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं कि आप उनको टिक कर सकते हैं, लेकिन उनके नीचे लाइनें भी दी हुई हैं कि अगर आपकी आप कोई और भाषा घर पर बोलते हैं तो उसे उस पर लिख दीजिए। लेकिन हमें अपने पंजाबी श्रोताओं को बधाई देनी है कि उनकी एक पंजाबी, भारत की एक ही भाषा उस लिस्ट में है जो कि पंजाबी है। तो हमें एक्चुअली पंजाबी लोगों से कुछ सीखना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा भी उसमें कैसे आए, हालांकि हम पंजाबी को हिंदी से अलग नहीं समझते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जब आप सेंसस में भाग लें तो आपकी चाहे भाषा पंजाबी हो, तमिल हो, तेलुगू हो, अगर आप हिंदी बोलना जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो उसे ज़रूर उसमें लिखिए।
13: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब हिंदी का जो स्टेटस है वो सबसे नीचे चला जाता है।
12: बिल्कुल, और देखिए ऐसा है कि किसी भी भाषा को वो कितने लोग उसे बोलते हैं उसके हिसाब से वो उसमें फंडिंग की जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए।
13: बिल्कुल,
12: और हम आपकी सहायता करेंगे।
13: बिल्कुल,
12: तो हम लोग एक दूसरे से मिलजुल कर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा तो हम एक, हाँ एक कहानी है जो मैंने लिखी है, मैं कुछ थोड़ी सी अलग सी है, आशा है आपको पसंद आएगी, वो भी आपको सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं।
13: प्रदीप जी, मैं कुछ कहना चाहूँगी कि श्रोताओं, आज मैं विशेष रूप से स्वागत कर रही हूँ आशिमा जी का, क्योंकि बड़ी मिन्नतों से वो आई हैं इस कार्यक्रम में। वो भी नीरज जी की फैन है, तो वो नीरज जी की कुछ कविताएं सुनाएंगी।
14: आप बुलाए हम ना आए।
13: तो आपका स्वागत है आशिमा जी।
14: थैंक यू।
12: तो इसी के साथ सुनते हैं आज का विचार।
11: श्रोताओं, मैं रंजना रमन लेकर आई हूं आपके लिए आज का विचार। आज का विचार भारत के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा पर एक प्रेरक उद्धरण है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में ज्ञान और विवेक का विकास करना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मानते थे कि शिक्षा सिर्फ जानकारी भरने का काम नहीं करती, शिक्षा का असली लक्ष्य है सोचने की क्षमता।
12: आज का विचार।
11: श्रोताओं, मैं रंजना रमन लेकर आई हूं आपके लिए आज का विचार। आज का विचार भारत के महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शिक्षा पर एक प्रेरक उद्धरण है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में ज्ञान और विवेक का विकास करना है।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं नीरज जी के बारे में, गोपाल दास नीरज जी के बारे में कुछ बातें। शैलजा जी,
2: श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको पहले कहा बताया था कि आज का विशेष कार्यक्रम पद्म विभूषण श्री गोपाल दास नीरज जी पर आधारित है, जिनकी पुण्यतिथि 19 जुलाई यानी कि आज के दिन है। उन्होंने 2018 में 19 जुलाई को अपना शरीर छोड़ा था। तो हमारे व्यक्तित्व को तराशने में जिन मुख्य अनुभवों का योगदान होता है, उसमें कविता और कहानी का एक विशेष स्थान है। नीरज जी की कविताओं ने 8 दशकों तक अनगिनत हृदयों को लुभाया है। आप में से श्रोता बहुत ऐसे होंगे श्रोतागण जिन्होंने नीरज जी का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत से ऐसे हैं, अधिकतर ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम कारवां गुजर गया तो सुना होगा। मानव प्रेम के अनंतमय गायक गोपाल दास नीरज पद्म विभूषण जी उनकी कविता साहित्य की प्राथमिक विधा रही है। इस युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य चेतना को गतिमान करने में नीरज जी की कविताओं का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। देश के जनमानस को जागृत करने में नीरज जी का नाम उल्लेखनीय रहेगा सदा। उनकी कविताएं तत्कालीन नहीं, मनुष्य जीवन के शाश्वत मूल्य हैं। अपने हृदय के उच्छ्वासों को शब्दों में समेटने की लयवंती सहजता के मधुर स्पर्श में नीरज जी बेमिसाल हैं। मैं ही नहीं सभा में तेरी अनगिनत कंठों का जमघट है, मैं ही नहीं सभा में तेरी अनगिनत कंठों का जमघट है, फिर मुझसे ही बार बार क्यों तेरा ये गाने का हट है। आसावरी समाप्त करूं तो दीपक का आग्रह हो तेरा, आसावरी समाप्त करूं तो दीपक का आग्रह हो तेरा। सचमुच गायक की मिठास गायक के लिए, सचमुच मधुबन की मिसाल गायक के लिए एक संकट है।
1: शैलजा जी, एक बात कहूं, आपको कंठस्थ है ये कविता और लगता है कि आप नीरज जी की बहुत बड़ी फैन हैं शुरू से ही।
2: तो बिल्कुल, क्योंकि 1960 में धर्मयुग में, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा धर्मयुग क्या होता है। धर्मयुग अब तो नहीं चलता है, लेकिन पहले
1: हमारे घर में आता था।
2: बिल्कुल, तो 1960 में धर्मयुग में प्रकाशित कारवां गुजर गया, जिसमें मुझे ही नहीं हिंदी जगत को एक सशक्त कवि का परिचय दिया था। तहलका मच गया था भारत में उनकी इस उस वक्त हमारे कॉलेज में सारे जगह कारवां गुजर गया क्या ही शोर हुआ करता था 1960 में।
1: तो इसी बात पर अब आप गीत सुना दीजिए।
2: बिल्कुल, आप सुनाइए वही, क्योंकि उसी कारवां गुजर गया कविता से ही नीरज जी अमर हो गए थे।

0: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर के संदेश और दोस्तों अभी आशिमा जी एक नीरज जी की कविता पढ़ने जा रही हैं आशिमा जी
2: छिप छिप अशुभ बहाने वालों मोती व्यर्थ बहाने वालों कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आग का पानी और टूटना है उसका जो जाके कच्ची नींद जवानी गीली ऊन बनाने वालों डूबे बिना नहाने वालों कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता
1: वाह वाह वाह
3: क्या कहना सावन नहीं मरा करता है
1: कितना गहरा इनके विचार हैं
3: कितना सुंदर लिखते हैं
1: बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे हां शैलजा जी अब बताइए थोड़ा
3: और आगे पढ़िए इसके आगे जो ये तो बहुत सुंदर कविता है
2: बस अभी मैंने मेन यही पढ़ा है अब आप बताइए
3: तो श्रोताओं मेरा जो व्यक्तिगत संबंध था नीरज जी से तो मेरा परिचय उनसे हुआ था 1963 में उस वक्त कारवा गुजर गया था उसका ऐसा शोर मचा हुआ था तो हमारे कॉलेज में उनको कवि सम्मेलन में की अध्यक्षता के लिए इनवाइट किया गया था तो उस फिर उस समय से किसी न किसी रूप में मेरा उनसे संपर्क रहता रहा व्यक्तिगत रूप में मुझे लगा कि नीरज जी एक बहुत ही प्रभावशाली संवेदनशील सुलझे हुए ज्ञानी व दार्शनिक थे हालांकि उनके बारे में बहुत सारी बातें भी कही जाती हैं उनके फेवर में उनके अगेंस्ट में लेकिन मुझे लगा कि वो बहुत संवेदनशील थे जिसमें उनमें शिशु की जैसी सरलता चरित्र की एक निश्चितता व आत्मा की विशालता झलकती है जैसे उनकी कविताओं में पता लगता है उनकी युवकोचित भावुकता बड़ी सहजता से उन्हें प्रेमी का रूप दे दे देती है मधुपुर के घनश्याम अगर कुछ पूछें हाल दुखी गोकुल का मधुपुर के घनश्याम अगर कुछ पूछें हाल दुखी गोकुल सा उनसे कहना पथिक कि उनकी अब तक उनकी याद हमें आती है बालापन की प्रीत भुलाकर वो तो हुए महल के वासी बालापन की प्रीत भुलाकर वो तो हुए महल के वासी जपते उनका नाम यहाँ हम यौवन में बनकर सन्यासी कितनी सुंदर उनके भाव थे
1: अरे
2: बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर
1: जो स्टाइल है कहने का और आपको ये कविता भी कंटेस्ट है ये हमें कुछ दर्शाता है कि आप कितनी बड़ी फैन रही हैं
3: नीरज जी की लोकप्रियता का कारण उनका सरस कंठ ही नहीं उनकी मर्म स्पर्शी काव्यानुभूति प्रवाहपूर्ण शैली व सहज सरलभाषा है जिसने मानव के संवेदनशील हृदय की सरस व सरल अनुभूति के दर्शन होते हैं उन्होंने श्रृंगार रस ही नहीं अपनी विद्रोहपूर्ण वाणी में युग युग से तड़पती कसकती मानवता की करुण सजग पुकार को शक्तिशाली शब्दों में बांधा है उन्होंने पाकिस्तान के लिए उन्होंने कई सारे पत्र लिखे थे एक पत्र अच्छा। था उनको पाकिस्तान के नाम
1: अच्छा
3: तो
1: पढ़िए
3: वो जो था कि बम्ब जिसमें बंद है सिंदूर हर कुआरी दुल्हन का बम्ब जिसमें बंद है सिंदूर हर कुआली दुल्हन का हो रहा है जर्द उससे हुस्न मरियम की बहन का नग्न संगीतें टंगी जिन पर की बेपर्दा जवानी नग्न संगीतें टगी जिन पर की बेपर्दा जवानी कब्र अकबर की फटी है याद कर उनकी कहानी प्यार जिसको छोड़
1: चलिए चलिए पढ़िए
3: प्यार जिसको छोड़ दुनिया में कहीं भी दिन नहीं है प्यार जिसको छोड़ दुनिया में कहीं भी दिन नहीं है वह मरे और शायरी रोए ना ये मुमकिन नहीं है
1: बहुत बढ़िया शैलजा जी
3: मैं न लिखता खत तुझे लेकिन रहा जाता नहीं है मैं न लिखता खत मगर तो मुझसे रहा जाता नहीं है दर्द ऐसा है कहूं भी तो सहा जाता नहीं है तो ये उन्होंने पाकिस्तान के लिए लिखा था लंबी कविता थी
1: लेकिन अच्छा एक्चुअली आपके पास तो उनकी कविताओं का बहुत बड़ा भंडार है आप कितनी चार किताबें लाई हैं उनकी और ये है कि इनमें से काफी कविताएं आपको कंठस्थ हैं लेकिन इसी के साथ-साथ हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें हमारे मेहमान अभी नहीं आए हैं
3: जी
1: तो हम एक
3: नीरज जी का गीत सुना दीजिए
1: नीरज जी का गीत सुनाने से पहले हम एक छोटी सी
3: कहानी
1: सुना
3: बिल्कुल, देते बिल्कुल बिल्कुल
1: जो जो मैंने लिखी है आशा है कि आपको पसंद आएगी मैं आपके लिए आज एक कहानी लाया हूं स्वाद का खोया हुआ संसार नमस्कार मित्रों आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां इंसानों के पास आंखें थीं कान थे नाक थी लेकिन जीभ का स्वाद नहीं था कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी बच्ची थी माया सुबह वह गरम-गरम नाश्ता करती थी भाप उठती थी सुगंध बहुत अच्छी आती थी लेकिन जैसे ही मुंह में खाना जाता था सब कुछ एक जैसा ना मीठा ना खट्टा ना नमकीन ना कड़वा उसकी मां कभी नहीं पूछती थी कि खाना कैसा लगा वह सिर्फ पूछती थी पेट भर गया उस दुनिया में कोई मिठाई की जिद नहीं करता था कोई सब्जी से मुंह नहीं बनाता था कोई यह नहीं कहता था कि आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बना है रेस्टोरेंट थे लेकिन वहां लोग खाने के स्वाद के लिए नहीं बल्कि साथ बैठने के लिए जाते थे कुकबुक नहीं थी शेफ मशहूर नहीं थे खाना सिर्फ शरीर को चलाने का ईंधन था एक दिन पुरातत्वविदों को 2000 साल पुरानी एक पत्थर की पटिया मिली उस पर एक जीभ बनी थी और उसके ऊपर पांच छोटे-छोटे चिन्ह नीचे लिखा था पांच उपहारों का सम्मान करो वैज्ञानिक हैरान रह गए जीभ और उपहार कौन से उपहार धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ शायद बहुत पुराने समय में इंसानों के पास एक ऐसी क्षमता थी जो अब खो चुकी है जिससे भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता था दिल भी भर जाता था लोग परिवार की रेसिपी संभाल कर रखते थे हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक स्वाद चखने जाते थे जन्मदिन के केक का इंतजार करते थे दादी के हाथ का खाना कभी नहीं भूलते थे अब जरा अपनी दुनिया की ओर देखिए जब मां गरम रोटी पर घी लगाती है जब पहली बारिश में पकौड़ों की खुशबू आती है जब आम का पहला टुकड़ा मुंह में जाता है जब चाय की पहली चुस्की मन को सुकून देती है क्या हमने कभी सोचा कि यह सब कितना बड़ा उपहार है शायद ईश्वर ने हमें स्वाद इसलिए नहीं दिया कि हम केवल अच्छा खाना खाएं शायद इसलिए दिया कि हम याद बना सकें रिश्ते जोड़ सकें और हर भोजन को एक अनुभव बना सकें इसलिए आज अब अगली बार आप अपने परिवार के साथ भोजन करें तो एक पल रुककर सोचिए अगर स्वाद कभी होता ही नहीं तो शायद हमें उसकी कीमत कभी पता ही ना चलती धन्यवाद दोस्तों आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी इसमें सिर्फ यह दर्शाया गया है कि हमारे पास कितनी गिफ्ट्स हैं भगवान ने हमारे लिए कितनी सारी गिफ्ट दी हुई हैं और हम उसका मूल्यांकन भी नहीं कर सकते लेकिन यह है कि हम रोजमर्रा में उसे प्रयोग करके हम कभी-कभी उसको पहचानते नहीं हैं तो हमें जरूर आवश्यकता है कि हम इन सब चीजों को जानें और उन्हें अप्रिशिएट करें तो शैलजा जी लेकिन इसके साथ-साथ मुझे एक बात और याद आई कि जैसे कि हम लोग पहले पत्र लिखा करते थे
3: जी
1: मम्मी पापा को फ्रेंड्स को दोस्तों को
3: जी हां
1: लेकिन अब तो ईमेल है ईमेल भी छूट गया तो व्हाट्सएप है व्हाट्सएप अब फोन से बात होती है मैसेजेस करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कुछ दिनों में हम जैसा कि इस कहानी में दर्शाया गया टेस्ट के बारे में हम खतों को भूल जाएंगे पत्रों को भूल जाएंगे लिखना भूल जाएंगे कुछ ऐसा हो सकता है कि दो चार जनरेशन के बाद लोग इसी तरह से बात करें कि ये लेटर क्या होता है पत्र क्या होता है
3: अगर आप ये जनरेशन बात कीजिए तो उन्हें यही लगेगा कि एरोग्राम क्या होता है पोस्ट कार्ड क्या होता है क्योंकि अभी तक किसी ने मुझे रिसेंटली बताया था मैंने उनसे कहा कि जरा लिख लीजिए इसको कहने लगी लिख हमने तो बहुत दिनों से लिखा ही नहीं है तो इसलिए उन्होंने कहा प्रैक्टिस नहीं मुझे लिखने की अब वो नहीं ना अंग्रेजी में लिख पाते हैं ना हिंदी में लिख पाते हैं क्योंकि उनकी आदत है टाइप करने की
1: लेकिन एक बात है शैलजा जी कि नीरज जी ने इतना सब कुछ लिखा है तो वो खास बात यह कि प्रेम पत्र वो खास पत्र होता है
3: बिल्कुल
1: तो ये है कि नीरज जी ने ऐसे ऐसे संगीत दिए हैं ऐसे ऐसी कविताएं लिखी हैं कि इस बात को भूल जाना बड़ा मुश्किल होगा तो इसी बात पर
3: हाँ
1: एक गीत सुना
3: उनका बिल्कुल एक रोमांटिक उनका गीत सुनाइए
1: बिल्कुल, बिल्कुल।

0: प्रदीप जी अभी आप बात कर रहे थे कि आजकल लोगों को चिट्ठियां लिखने का या पेपर पेंसिल से लिखने की आदत बिल्कुल छूट गई है और हम लोग जो थे हमारा तो जीवन शुरू हुआ था पोस्ट कार्ड से पहले 3 पैसे का पोस्ट कार्ड आता था उसी पे हम चिट्ठियां लिखा करते थे और हमारे स्कूल में भी हम लोगों को सिखाया जाता था कि आप एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे प्रिंसिपल को कि सब चीज़ें वहाँ पे कि छुट्टी लेने के लिए एक दिन की किस तरह से लिखेंगे ये हम लोगों की प्रैक्टिस होती थी तो मैं यही सोच रही थी कि फाड़ मत इनको कि जब अपनों से दिल भर जाएगा फाड़ मत इनको कि जब अपनों से दिल भर जाएगा हौसला देंगी तुझे ये चिट्ठियाँ रहने भी दे प्रेम पत्र जो थी हमने कहानियां लिखी है प्रेम पत्र के ऊपर बिल्कुल और प्रेम पत्र भी लिखा है
1: आपने बहुत अच्छा किया है सबको प्रेम पत्र कभी कभी लिख देना चाहिए क्यों क्यों
0: प्रेम पत्र
2: एक आपने सुना होगा प्रदीप जी मालूम पड़ा कि पोस्टमैन से शादी हो गई इतनी चिट्ठियां आपने लिखी
0: कि पोस्टमैन ही लाता है सारी अच्छी अच्छी खबरें ये तो बहुत सारे श्रोताओं को याद होगा कि कितनी बेसब्री से पोस्टमैन का इंतजार होता था और चिट्ठियां आने में कम से कम और अगर वो चिट्ठियां माता पिताजी को पसंद ना हो तो बीच में कॉन्फिस्केट भी कर दी जाती थी एक पता नहीं कितनों को होगा क्योंकि पिताजी माताजी अलर्ट रहते थे कि कोई गलत चिट्ठी आएगी तो सफाया कर दो बीच पे
3: चिट्ठी आई है
1: नहीं बहुत अच्छा चल रहा जी आपने बहुत अच्छा किया बहुत अच्छा कर रही हैं हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं आप हमारी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं हमारे दर्पण को आगे ले जा रही हैं
0: जी
1: तो ये तो बड़ी अच्छी बात है तो शैलजा जी और कोई एक खास बात बताइए नीरज जी
0: नीरज जी को हम लोगों ने बुलाया था 1995 में सिडनी में उस समय इतने में सिडनी में इतने ज़्यादा लोग भी नहीं थे लेकिन फिर भी हमारी जो अटेंडेंस थी वो करीब 300 से ज़्यादा लोग आए थे उनको सुनने के लिए जबकि आप आए थे उसमें अच्छा आप भी थे हाँ तो नीरज जी का एक तो उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है उनकी संगीतमय आवाज़ है बहुत ही सुंदर आवाज़ है और उनका बोलने का तरीका और उनकी हर चीज़ उनकी जो थी नायाज थी और लेकिन एक उनकी मज़ेदार बात थी कि उनको पहले तो हमने एक होटल में ठहराया था उसके बाद हमारे घर आके रहे थे कि होटल में कई सारे जर्नलिस्ट आए हुए थे उनका इंटरव्यू लेने के लिए तो उनके जहाँ उनका कमरा था उसमें राजीव मेरा ब्रदर जो था वो तैनात था उनको उनकी सेवा करने के लिए तो सेवा उनकी ऐसी थी तो बाहर जो जर्नलिस्ट थे उन लोगों ने कहा कि बड़ी देर हो गई है नीरज जी ने बुलाया नहीं अभी तक तो हम कमरे में गए तो हमने देखा कि नीरज जी तो लेटे हुए थे पलंग पर और राजीव बाबू जो थे लाल तेल लाए थे नीरज जी अलीगढ़ से तो राजीव जो थे उनकी मालिश कर रहे थे तो मैंने कहा राजीव ये क्या हो रहा है कहने गया नहीं थोड़ी मालिश करवा ली थी तो हमने कहा नीरज जी बाहर बैठे हुए हैं जर्नलिस्ट सारे और आप यहाँ और हमने राजीव से कहा हमने कहा तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और तुम मालिश किए जा रहे कहने गए नहीं नीरज जी ने कहा पहले मालिश करो तब जाऊँगा
1: अच्छा तो आशिमा जी आपके पास कुछ और भी है क्या सुनाने के लिए इसके पहले कि हम एक गीत सुनाए आप बताइए
3: अच्छा ये कविता है मैं पीड़ा का राजकुमार हूँ मैं पीड़ा का राजकुमार हूँ तुम शहजादी रूपनगर
0: वाह वाह तुम शहजादी रूपनगर की
4: वाह वाह
3: हो भी गया प्यार हमें तो बोलो मिलन
0: मिलन
3: कहाँ
0: पर होगा
4: वाह वाह वाह वाह
3: मिलो जहाँ ना पता खुशी का मैं उस आंगन का
0: इकलौता
3: तुम उस घर की कली जहाँ नित होट करे
0: गीतों का मेला वाह
4: वाह वाह वाह
3: मेरी उम्र अमावस काली और तुम्हारी पूनम पूर्णिमा मिल भी गई राशि अपनी तो बोलो लगन कहाँ पर
0: लगन कहाँ पर होगा
4: वाह वाह
0: कितना सुंदर
3: मैं पीड़ा का राजकुंवर हूँ मेरा कुर्ता सिला दुखों ने बदनामी ने काच निकाली तुम जो आंचल ओढ़े उसमें नब ने सब तारे डाले मैं केवल पान ही पानी तुम केवल मदिरा ही मदिरा मिट भी गया भेद तन का तो मन का हवन कहाँ पर
0: हवन कहाँ पर होगा
4: क्या सुंदर क्या विचार है
3: बहुत ही सुंदर है मैं जन्मा इसलिए कि थोड़ी उम्र आंसू की बढ़ जाए तुम आई इस हेतु की मेहंदी रोज नए कंगन जड़वाए
0: रोज नए कंगन जड़वाए
3: तुम उदयाचल मैं अस्ताचल तुम सुखांतिक मैं दुखांतिक जुड़ भी गए अंक अपने तो रस अवतरण कहाँ पर होगा
0: जुड़ भी गए अंक अपने तो रस अवतरण कहाँ पर होगा
3: वाह
0: कितना सुंदर दिखा
4: वाह वाह वाह बहुत अच्छे अच्छा सुनिए अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा एक सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं फिर आ जाएंगे नीरज जी
0: ठीक
4: पर
0: है।
4: लेकिन हमारी सरिता जी ने भारत से
0: जी
4: राम मंदिर के बारे में एक
0: राम मंदिर बहुत जरूरी
4: एक
0: है
4: वार्ता भेजी है उसे सुन लेते हैं
5: नमस्कार श्रोताओं मैं सरिता सोनी रेडियो दर्पण में आप सभी का स्वागत करती हूँ श्रोताओं आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे करोड़ों भारतीयों का ध्यान अपनी ओर खींचा है अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित चोरी और अनियमितताओं के मामले पर सबसे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास अयोध्या का श्री राम मंदिर सदियों के संघर्ष सामाजिक आंदोलन और लंबे कानूनी विवाद के बाद बना वर्ष 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और जनवरी 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई इसके बाद देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे मंदिर में नकद सोना चांदी और विदेशी मुद्रा सहित बड़ी मात्रा में दान आने लगा अब सवाल है विवाद शुरू कैसे हुआ मीडिया रिपोर्ट और जांच एजेंसियों के अनुसार मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारियों पर नकदी और कीमती वस्तुएं निकालने के आरोप लगे शुरुआती जांच में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षा व्यवस्था और दान गिनने की प्रक्रिया में कई गंभीर कमियां सामने आने का दावा किया गया आरोप है कि लगभग 45 दिनों की अवधि में दर्जनों संदिग्ध घटनाएं हुई जिनमें कर्मचारियों को कथित रूप से नकदी अपने कपड़ों और अन्य स्थानों पर छिपाते हुए देखा गया इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल जिसे एसआईटी कहते हैं का गठन किया अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके पास से नकदी सोना चांदी और विदेशी मुद्रा बरामद भी होने की जानकारी सामने आई है हालांकि ये पूरा मामला अभी अदालत और जांच की प्रक्रिया में है इसलिए अंतिम निर्णय आना बाकी है जांच के दौरान यह भी सामने आया कि दान की सुरक्षा कर्मचारियों की तलाशी सीसीटीवी निगरानी और निगरानी व्यवस्था में कई प्रक्रियात्मक कमियां थी इन्हीं कारणों से मंदिर ट्रस्ट ने प्रशासनिक बदलाव किए और भविष्य में अधिक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनैतिक नहीं बल्कि जन आस्था और जवाबदेही है राम मंदिर करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है इसलिए यह आवश्यक है कि हर धार्मिक संस्था चाहे वह मंदिर हो मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च दान और सार्वजनिक धन के प्रबंधन में पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखे यहाँ रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भी यह घटना एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि आस्था तभी मजबूत होती है जब उसके साथ जवाबदेही और विश्वास भी जुड़ा हो हम सभी ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जांच अब निष्पक्ष होगी पारदर्शी और शीघ्र पूरी हो ताकि सच्चाई सामने आए दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले और निर्दोषों के साथ न्याय हो इसी संदेश के साथ आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति सुनने के लिए धन्यवाद नमस्कार आप सभी का दिन शुभ हो
6: भाई साहब ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है
7: बहन जी करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है इसमें अनियन गार्लिक जिंजर टमाटर नमक मिर्च हल्दी धनिया व वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
4: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों आज हमारे साथ यतीन्द्र जी भी स्टूडियो में मौजूद हैं, हालांकि ये चुपचाप बैठे हुए हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि कहां से क्या करें, लेकिन हम इनकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हमसे हम इनके जो कोर सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे।
2: जी ये जी अकाउंटेंट होने के नाते मैं एक चीज़ में कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, कि कभी मैंने सोचा था कि ज़िंदगी मुझे ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। वो मेले इतना बड़ा हो गया है, करीब 3-4 हफ्ते हो गए। एक हमारे नए क्लाइंट हैं जिनका वो हमारे ऑफिस में आए थे सिल्वा जी,
0: जी हाँ।
2: तो उन्होंने कहा कि मैंने ना स्लीपिंग की जो मशीन होती है वो लगाना बंद कर दिया,
0: स्लीप अपनिया की।
2: हाँ, हाँ। स्लीप अपनिया की। तो बड़ी अच्छी बात, वो तो खुशी की बात है।
0: हाँ।
2: फिर थोड़ा पॉज करके उन्होंने मुझे बोला कि ये आपकी वजह से हुआ।
0: अच्छा।
2: मैंने कहा कि वो भी इंडियन है, होटलियर है। हाँ। नाम नहीं ले सकता किसी वजह से, तो वहाँ प्राइवेसी वजह से राधर। तो मैंने कहा कि मैं अकाउंटेंट हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। लेट मी क्लेरिफाई दैट पार्ट। ना कहने लगे कि ये सच है कि जब से आपने हमारा काम संभाला है तो इतना बड़ा, मैंने
0: कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
2: मैं शायद $1 करोड़ रख दो, ये रख दो, ये इतना बहुत बड़ा कंपनी की कितना हम जीवन को अफेक्ट करते हैं। इसलिए अभी हमने सोचा है कि हम कुछ न कुछ ऐसे अपने श्रोताओं को दो जिससे कि उनके जीवन में जो भी एक फाइनेंशियल हेल्थ जिसको कहते हैं अच्छा हो। तो एक कंसेप्ट होता है SMSF, सेल्फ मैनेज सुपर फंड, जिसका मैं स्पेशलिस्ट भी हूँ, मैं उसका ऑडिटर भी हूँ। तो वेल्थ क्रिएशन के जो पॉइंट हैं सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी अब लिमिटेड होते चले जा रहे हैं। लेकिन SMSF को हम ऐसे बोलते हैं कि लीगल टैक्स हेवन विद इन ऑस्ट्रेलिया, लीगल टैक्स हेवन विद इन ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको मालूम है कैसे इसका उपयोग करा जाए। तो प्रदीप जी, एक चेंज हुआ है अभी इस बजट में कि उन्होंने कहा कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोन नहीं ले सकते हो। हाँ, तो वो तो बहुत बड़ा एक वो था, इंसेंटिव था, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक एक अलाउ है जो एक रेगुलेशन 13.22C, रेगुलेशन 13.22C के अंतर्गत एक यूनिट ट्रस्ट आप बना सकते हो, जिससे कि आप जो दूसरी फंडिंग, जैसे कि एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 1 मिलियन का एक प्रॉपर्टी है, सुपर फंड के पास में केवल 5 लाख है, तो 5 लाख कहाँ से आए? तो अगर आप वो यूनिट ट्रस्ट बनाए तो उस यूनिट ट्रस्ट में आप अपने और जो पैसा वो डाल सकते हो।
4: अच्छा।
2: और तो जैसे फैमिली ट्रस्ट है, आपकी कंपनी है, उसे डाल सकते हो। तो बगैर लोन लिए आप उसको इस तरीके से कर सकते हो। तो एक टेक्निकल थोड़ा सा मुझे मालूम है, लेकिन आप अपने अकाउंटेंट को अगर आप बात करेंगे और उनको बोलेंगे कि भाई ऐसे ऐसे मैंने सुना है दर्पण रेडियो पे कि 13.22C का एक यूनिट ट्रस्ट बनता है, स्पेशल यूनिट ट्रस्ट होता है, जिसके थ्रू आप ये खरीद सकते हो। तो
4: अच्छा, ये बताइए यतीन्द्र जी कि हमने सेल्फ मैनेज सुपर फंड बना लिया, उसमें हमारा सुपर तो जा ही रहा है, अगर हम उसमें अपनी सैलरी भी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं क्या?
2: हाँ, तो एक सैलरी तो दो किस्म के कंट्रीब्यूशन होते हैं। अच्छा। एक कंसेशनल कंट्रीब्यूशन होता है जिसकी लिमिट अभी 7 से 32,000 हो गई है। अच्छा। और तो कंसेशनल का मतलब होता है कि आपको टैक्स का एडवांटेज मिल रहा है।
4: अच्छा।
2: तो आप अपनी सैलरी को कम करके तो आप बेसिकली 15% केवल टैक्स पे कर रहे हो। और एक होता है नॉन कंसेशनल कंट्रीब्यूशन, जो आफ्टर टैक्स होता है। तो कई तरीके से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो आपका प्रश्न अगर ये है कि हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं सुपर फंड में, आंसर यस, सैलरी सेक्रीफाइस करके कर सकते हैं, आंसर यस।
4: अच्छा, ठीक है। तो सैलरी सेक्रीफाइस करके तो कर ही सकते हैं, और टैक्स जो हमारा मनी है उससे भी हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल सही। इस एडवाइस से आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन फिर वही बात है कि आप अपने अकाउंटेंट से बात करिएगा और दे विल हेल्प यू टू यू नो टू रीजिग योर थिंग।
4: तो यतीन्द्र जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई, पैसे की बात तो बहुत अच्छी होती है, और आपने जो अपने एथिक्स की बात बताई वो भी बहुत अच्छी है, और हमें इस बात का गर्व है कि आप भी हमारे साथ इस दर्पण के मुहिम में जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ हम ऐसा करते हैं कि हम एक सुंदर सा नीरज जी का गीत सुना देते हैं, उसके बाद हम अपने मेहमानों का स्वागत
0: अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे।
4: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
0: सॉरी।

0: फिर रोजिल में लिवरपूल में अभी सेटर में हुआ था, दो ब्लैकटन में चलते हैं, वेंटवर्थविल में, और अभी उम्मीद कर रहे हैं कि स्ट्रेटफील्ड में एक और नया नेक्स्ट ईयर चलेगा।
1: बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये तो ज़रूरत है हम लोगों की। और ये लोनलीनेस है, ये बड़ा एपिडेमिक है, और इससे आदमी के की हर बात पर फर्क पड़ता है, स्वास्थ्य पर फर्क पड़ता है,
2: बिल्कुल
1: मेंटल फर्क पड़ता है। ऐसे शैलजा जी ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगी।
2: ये कि एक अमेरिका में एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी में उन्होंने 60+ लोगों को दो उसमें डिवाइड किया था। तो एक जो लोग थे वो लोग तो चले गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने के लिए और सब कुछ, जैसे आप क्या है कि गाने, पुराने गाने उन्हीं में लोगों को इतना उत्साह लगता है, मैंने देखा है किस तरह से लाइवली हो जाते हैं लोग। तो ये जो दो ग्रुप थे, एक जो ग्रुप था वो घर में ही रहा, दूसरा ग्रुप जो था पिकनिक एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे गए थे। तो उन्होंने देखा कि इस स्टडी में इतना बड़ा डिफरेंस था दो लोगों में, जो लोग एक हफ्ते के लिए हॉलीडेज के लिए गए थे उनकी जो टेम्परमेंट था वो, उनका जो लेवल ऑफ मूड था वो उनसे कहीं ज़्यादा था कि जो लोग घर में रहे थे। तो आपने जो काम किया है ये तो बिल्कुल इंडिस्पेंसिबल है कि, और मैंने देखा है कि कितना लोगों में उत्साह रहता है कि हर किसी को लगता है कि आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, यानी हर उम्र के लोग उस खड़े होके और उसमें ठुमकते हैं। तो ये
0: देखिए ठुमकने की बात, जब 91 ईयर ओल्ड का इंसान जो कहता है कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, कि मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, जब वो गाना, कभी कभी मैं वीडियो में वो फेसबुक में करती हूँ तो बाद में देखती हूँ, पहले ऐसे बैठे होते हैं, फिर थोड़ा सा हिलते हैं, फिर थोड़ा सा उठते हैं, फिर आके फ्लोर में
2: फिर भूल जाते हैं, होते हैं,
0: फिर बाद में नाचने लगते हैं। तो वो जो खुशी मिलती है, तो ये हम गाना नहीं है, उनके साथ ये मेमोरीज क्रिएट करते हैं, उनको एक मकसद मिलता है, रिकॉग्निशन मिलती है कि हम वैल्यूड हैं, और उनको कल्चर से कनेक्ट होता है। जो माइग्रेशन के बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, अपने घर को छोड़ना, अपनी फैमिली, रिश्तेदार, अरे इंडिया में तो वो सब्जी वाला भी बातें करता है,
2: बिल्कुल
0: माई आती है, सारी सारा समाचार देती है, गॉसिप सब बता देती है, अरे यहाँ पे तो अपने बच्चे के घर में भी तो फोन करके जाना पड़ता है,
2: बिल्कुल
0: अरे प्राइवेसी, कहीं हमारी प्राइवेसी खत्म ना हो जाए,
2: बिल्कुल।
0: तो कल्चरल शॉक तो है, पर जो कल्चर वही होती, जिस वो खाना जो जिससे हम बचपन से खाते हैं, जो गाना सुनते हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारी कल्चर है, तो वो भूलते तो नहीं है। तो इसके लिए जो आशा में आके यही करते हैं कि एक तो ये है कि नो रिलीजन नो पॉलिटिक्स, आइए मस्ती करिए। तो कभी कभी लोग कहते हैं हम भजन करें कीर्तन, तो मैंने कहा जी गुरुद्वारे में चले जाइए, बड़ा अच्छी बात है, हम भी जाते हैं, संडे को जाते हैं,
2: और क्या, बिल्कुल।
0: पर यहाँ पे आके आपको वैल्यू होनी चाहिए अपनी, जो दिल करे, कोई जज करने वाला नहीं है। और अभी बहुत अच्छा लगता है जबकि हमारे सीनियर्स जो टेम्प्रेरी आते हैं बच्चों के पास, कभी कभी चार बार आते हैं कुछ साल बाद, कहते हैं कि अब जाने को दिल नहीं करता, तो इससे ज्यादा और कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कहते हैं आशा में आते हैं,
2: बिल्कुल।
0: तो इसीलिए हमारा एक जो है ऑनलाइन संडे को 4:30 बजे होता है, लास्ट संडे में, जिसमें कि अजमेर में एक पूरा ग्रुप है, वो हमारा ग्रुप अजमेर में भी है, वो जो आर्टिस्ट हैं वहाँ से गाते हैं,
2: बिल्कुल।
0: जो सीनियर यहाँ से चले जाते हैं लास्ट मीटिंग में, चंडीगढ़ से, अजमेर से, इंदौर से, गुजरात से, तो ग्लोबली पीपल जुड़ जाते हैं।
1: बहुत अच्छी बात है, और ये तो मल्टी नेशनल प्रॉब्लम है जिसका आपने सॉल्यूशन ढूंढा है, बहुत अच्छी बात है। आशा है कि आपके इस मुहिम का प्रचार प्रसार और अधिक हो और बहुत अच्छा रहे। तो आपसे बात जारी रहेगी, लेकिन इसी बीच में हमारे पास रंजना जी ने एक और वार्ता भेजी है,
2: ठीक है,
1: हम उसे सुन लेते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: अभी जो मोदी जी का विजिट हुआ था कई कंट्रीज में, उसके बारे में है।
2: जब तक आप लगा रहे हैं विजेंद्र जी, आपके कितने मेंबर्स होंगे कुल मिला के? 9 तो आपके सेंटर्स हैं, लेकिन
0: मेंबर्स को अगर काउंट करने लगे तो हजारों में भी कह सकते हैं,
2: हजारों में भी। अच्छा,
0: हर महीने जो हम ग्रुप में करते हैं, अभी जो व्हाट्सएप का ग्रुप है 350 से ज्यादा वो है, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी 300 ज्यादा लोग हैं, और जो लोग आते हैं उनका नाम हर रोज भी नहीं भी लिखा हुआ, जो इवेंट में भी आते हैं, मोर देन 400 फेस टू फेस हमने मील्स होते हैं, और 1000 कप्स ऑफ टी हर महीने उससे ज्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो इतने मेंबर्स

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश
2: श्रोताओं आपको ये लगा होगा कि आशा का जो मुखड़ा है वो तो बिजेंद्र जी हैं कि आशा को आप की कल्पना नहीं कर सकते हैं बगैर बिजेंद्र जी के मुखड़े के लेकिन उनके पीछे जो सपोर्ट ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं ना कि अनसंग हीरो तो उनके साथ जो अनसंग सबसे इंपॉर्टेंट हीरो हैं वो पंकज जी हैं कि मुझे लगता है हर तरह से वो सपोर्ट करते हैं उनका भी कमिटमेंट अनकंडीशनल है और उतना ही है और वो दोनों जो हैं पैशनेट पैशनेट अबाउट आशा विजेंद्र जी मैंने ये देखा था कि श्रीलंका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपके उसमें आती है अक्सर
3: हां जी उनके साथ जो सालिया जो है वो श्रीलंकन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं
2: जी
3: और गोल्डन वाटर ग्रुप है तो उनके कोलैबोरेशन से हम मिलके प्रोग्राम करते हैं वो हमारे प्रोडक्शन डायरेक्टर भी हैं चार प्रोडक्शन डायरेक्टर हैं
2: राइट
3: और हमारे चार डायरेक्टर भी हैं बोर्ड में तो जो सेकंड ब्लैक टोन का जो है अभी जो नेक्स्ट ट्यूज में होगा ट्यूसडे में है सीनियर ग्रुप वो श्रीलंकन ग्रुप है तो क्योंकि हमारा कल्चर तो सेम है
2: जी
3: सो हम तो चाहते हैं कि और लोग भी और ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ जुड़े ताकि उनके लिए भी उनकी मदद से ही उनकी हेल्प से सर्विसेज ज्यादा दे सकें
2: जी
3: ताकि जो जो सबका बुढ़ापा है माइग्रेटेड कंट्री में सच ए ब्यूटीफुल कंट्री ऑस्ट्रेलिया तो किस कंट्री में आप बाहर से आके और आपको इतना मान मिलता है तो बहुत ग्रेटफुल है जो हमारे बच्चे सेटल हुए हैं हम लोगों की मान मिलता है हमें मदद मिलती है अगर हमारी कम्युनिटी जो साथ में आ जाए तो ये जो है कि ये बुजुर्गों को नहीं है बच्चों को भी हेल्प होगी अगर आपके माँ बाप और आपके अंकल आंटी मालूम है कि वो हैप्पी हैं तो आप भी खुश होंगे
2: बिल्कुल
3: तो अपने काम में अपना टाइम लगा सकेंगे नहीं तो उनको देखेंगे या अपना काम करेंगे
1: विजेंद्र जी आपने कहा कि अगर और संस्थाएं भी साथ में आ जाएं तो अच्छा रहेगा आप दर्पण रेडियो को भी अपनी अपनी आशा से जोड़ लीजिए
3: थैंक यू जी बिल्कुल ये तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा तो वी विल लव टू हैव यू अलोंग एज आवर पार्टनर तो अभी हमारी वेबसाइट का अपग्रेड हो रहा है सो वी विल पुट ऑल द सपोर्टर्स हियर तो डेफिनेटली और उम्मीद करते हैं कि आपके साथ आपसे मिलते जाएंगे और आपके स्रोतों को मिलते जाएंगे जिनको देखा नहीं पर फिर भी लगता है कि बहुत देर से जानते हैं
1: और समय समय पर हमारे कार्यक्रम में भाग लेती रही है और इसके साथ साथ आपका जो कार्यक्रम हो रहा है उसके बारे में हमें बताती रहिए कहाँ पर क्या हो रहा है तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा और हमारे श्रोता भी आपसे जुड़ेंगे तो आप अभी आपके कौन कौन से कार्यक्रम होने जा रहे हैं
3: देखिए जी सैटरडे में अभी लिवरपूल हुआ था ट्यूसडे में जो श्रीलंकन सीनियर्स ग्रुप है ब्लैक टाउन में वेस्ट पॉइंट में लेवल फोर में कम्युनिटी सेंटर में 11 to 2 थर्सडे को है राउज हिल मेट्रो के $2.50 दो और एयर कंडीशन मेट्रो में बैठ के 15 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं और ब्लू स्काई के अंदर आप वॉक करके फाउंटेन सा बाहर का देखेगा लिफ्ट लेके ऊपर आइए 11 to 2 राउज हिल में है वहाँ पे योगा होगा बॉली फिट होगा गाना होगा और चाय के साथ आपको बिस्किट और स्नैक्स भी मिलेंगे और गरम गरम राइस बने हुए और अब सिंपल लंच भी मिलेगा
1: ये बॉली फिट क्या होता है
3: बॉली फिट इसलिए हमने किया है कि हम लोग ना एक्सरसाइज कम करते हैं हम योगा तो कर लेते हैं ब्रीदिंग वो भी बहुत ज़रूरी है पर जो बॉडी है जिसको नहीं यूज़ करेंगे ना वो पार्ट बेकार हो जाते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए हमने सोचा कि म्यूज़िक बहुत पावरफुल है चाहे वो डिमेंशिया हो या कुछ और मेंटल हेल्थ तो इन ए वे मेंटल हेल्थ तो म्यूज़िक के साथ जो है हम एक्सरसाइज करवाते हैं सो बॉली फिट फिटनेस का प्रोग्राम हमने यूनिक हमने स्टार्ट किया था पर बहुत अच्छा लगता है कि फेसबुक में देखते हैं इंडिया में भी यहाँ भी जो जितने ग्रुप हैं उन्होंने करना शुरू किया है तो हमें तो बड़ी खुशी होती है कि कुछ अच्छा काम करते हैं तभी कॉपी करते हैं ना
1: बिल्कुल बिल्कुल
3: तो अच्छी बात है
2: तो श्रीलंकन के अलावा आपने फिजी और नेपाल के जो एसोसिएशन उनसे भी कोलैबोरेट किया है
3: पंकज जी आप बताइए
2: बताइए पंकज जी
4: हम ने अभी नेपाल के जो है मिस्टर जो सब प्रोग्राम करते हैं उनका नाम गुरदबंग है
1: थोड़ा माइक्रोफोन के पास है
4: नेपाल के जो सीनियर एसोसिएशन का करते हैं वो गुरदबंग जी हैं वो हमारे एरिया में वो भी इस तरह हम उनके साथ में जुड़ के कर रहे हैं
2: जी
4: तो वो भी अभी हम लोग साथ में मिल के ही करेंगे और फिजी में भी जो है अभी काफ़ी बड़ा कम्युनिटी है फिजी का भी वो हमारे ही अपने भाषा में सब हम लोग बात करते हैं वो भी हमारे साथ अब ज्वाइन हो रहे हैं और हमारा ये जो हमारी आशा है इसी तरह हम सबकी मदद से बढ़ती जा रही है और हम रुकेंगे नहीं अभी तो हम शुरुआत ही है और आप सब लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग जितना कर सकते हैं करते रहेंगे
2: बिल्कुल क्योंकि आपका ग्रुप मुझे लगता है इतना स्टेबल है इतना फंक्शनल है और स्टडी ग्रुप है तो ये जो है बहुत सारी रिसर्च के लिए इतना अच्छा टॉपिक हो सकता है एक तो आपने मुझे वेगली याद है कि डिमेंशिया स्टडी में आपका ग्रुप इन्वॉल्व था कुछ सालों पहले
3: अभी भी हैं जो हमारा जो फोकस है अभी भी आशा में डिमेंशिया का है तो पहली दफ़ा हमने डिमेंशिया का जब हमने फोरम किया था तो लोगों को मालूम नहीं था डिमेंशिया होता क्या है
2: जी
3: डिमेंशिया के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है हम लोग कहते हैं कि इंडिया में बचपन में हम सोचते थे ना कि सत्रे बतरे हो गए तो बूढ़े में सबके सत्तर हो गए तो
2: सठिया गए हैं सठिया जाते हैं
3: तो एक मैंने जब बचपन में मैं सोचती थी दादी कभी वो पैदा ही बूढ़े होंगे कभी कैसे यंग होंगे तो बाद में अब समझ आती नहीं नहीं वो भी यंग थे तो ये बुढ़ापा जो है दो किस्म का होता है एक फिजिकल होता है एक मेंटली होता है कुछ लोग तो 40 साल में ही बूढ़े हो जाते हैं कुछ लोग 80 साल में भी जवान रहते हैं
2: हाँ।
3: पर जो बॉडी है वो अगर आप फिट रखेंगे और मेंटल आपका स्वास्थ्य ठीक होगा तो आप 110 ईयर्स तक भी जवान रहेंगे सो
2: आपका सॉरी आपका ग्रुप इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है मुझे ये लगता है कि अगर कोई यंग कोई भी हो स्कॉलर हो यूनिवर्सिटी में कहीं कि आपके ग्रुप के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए कि किस तरह से ग्रुप ने जो हमारे एल्डरली हैं हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको किस तरह से एक राह दिखाई है और उनके लिए एक नया जीवन शुरू किया है तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आपका ग्रुप तो चल ही रहा है लेकिन उसके अलावा आई थिंक जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज कि वॉट द पॉइंट्स एंड हाउ हमारी जो जनरेशन यहाँ पे है किस तरह से हम लोग जो हैं डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स यहाँ आते हैं और उनके लिए कोई ऑक्यूपेशन नहीं है कोई उनकी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं है किस तरह आप प्रोवाइड कर रही हैं एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक विच वी कैन थिंक अबाउट
3: ये तो बहुत अच्छा लगेगा डिमेंशिया के लिए आपको बताएं कि माइंड केयर का प्रोजेक्ट है लाटाबॉन यूनिवर्सिटी में नारी के साथ हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी
2: जी
3: और लास्ट ईयर पंकज भी हमारे साथ गए थे उसकी एडवाइजरी बोर्ड में थे
2: जी
3: और बहुत गर्व से कह सकते हैं पहली दफ़ा वन ऑफ द फोर्थ लैंग्वेज हिंदी में रिसोर्सेज बने हैं वो बुक हमारे पास है नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आपको लेके मे बी उसकी कॉपी भी हम बनवा देंगे तो रिसर्च में उन्होंने हिंदी